ती कशी दिचिनी बेमी बर तू मंदिचिनी खिलाली जाऊनम खिलाली जाऊनम खिलाली मंकी जी हे रावनम खिलाली खिलाली जाऊनम खिलाली मंकी